फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवें, लख होवें लखवीस, लख

0: प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका।
1: कौन पत्नी कौन वो,
0: सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग। पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में।
2: आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ अ लाइफटाइम? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
3: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
4: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
3: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
5: Lemfi means quicker and safe way to send money.
6: Lemfi means low transaction fees and great exchange rates.
5: Lemfi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
6: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with Lemfi. Download the LEMFI mobile app today.
7: Lemfi is registered by the FCA. T's and C's apply.
8: Listen back to your favorite shows by logging on to LikeRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Breakfast with Deep Raja. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Talker Radio Network, broadcasting across the Midlands.
1: हर भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए आहा।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: भाई डॉन फिल्म से लिया था ये गाना किशोर कुमार की आवाज में, और ये एक अवार्ड विनिंग गाना था, क्योंकि इस गाने को गाने के लिए किशोर कुमार को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और क्या म्यूजिक बनाया था कल्याण जी आनंद जी ने, उन्हें भी म्यूजिक के लिए नॉमिनेशन मिला था, लेकिन इस फिल्म में इस गीत के लिए किशोर दा ने, और वो गाना सुना है ना आपने, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, उस गाने के लिए आशा जी ने भी अवार्ड जीता था। लेकिन ये गाना हमने सुनवाया, और उससे पहले मोहम्मद रफी साहब की आवाज में तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, आप सभी का फेवरेट गाना हो लीजिए, दो आपके मन पसंद गीतों के साथ एक बार फिर से द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और मुझे उम्मीद है कल का दिन आप सबने बहुत ही अच्छा बिताया होगा, और आज ये 3 घंटे मेरा साथ देने के लिए आप बिल्कुल तैयार है ना। चलिए फिर हो जाए, बढ़ जाए आगे। सभी को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं तो आज 1 pound आपको देगा 127.5 भारतीय रुपए, और लेकिन ये ट्रांसफर आपको SBI ब्रांच ऑनलाइन और उनके योनो ऐप के थ्रू करवाना होगा। और इसके अलावा अगर आप SBI या योनो ऐप के थ्रू 1000 pound से ज्यादा सेंड करते हैं तो आपको 75 pound का वाउचर मिल सकता है जब भी आप कराएं, और अगर आप 2000 pound से ज्यादा का ट्रांसफर कराते हैं तो आपको मिल सकता है 1 gram गोल्ड कॉइन, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai
2: Leica Radio. The wait is now

राकेश रोशन की म्यूजिक पर देश परदेश फिल्म का ये गाना नजराना भेजा किसी ने प्यार का, चलिए मेरी ओर से आप सबके नाम पर करती हूँ। आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया है और इतने सालों से देते आ रहे हो, देखिए उसी का रिजल्ट है कि इस बार फिर से लेटेस्ट रेडियो लिसनिंग फिगर्स में हम फिर से नंबर वन है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड मिलकर, यानी कि जो लाइका ग्रुप है, चाहे वो यहाँ हो लंदन में हो या बाहर कहीं हो, सब मिलकर हमारे रेडियो को बहुत ही प्यार से सुना जाता है। और आप देखिए गोल्ड तो सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन बना है हर बार की तरह इस बार भी, यानी कि नंबर वन। और ये सब आपका प्यार ही है, इसलिए हम एक बार फिर से नंबर वन बने हैं। और जिन्होंने इतना प्यार दिया है उन सभी को थैंक यू कहने का भी समय आ गया है, तो पहले ही थैंक यू कहती हूँ। लेकिन उसके अलावा जिन्होंने इतने खूबसूरत मैसेजेस भिजवाए हैं उनको भी थैंक यू कहने का समय आ गया है। अरुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा ही बहुत प्यार के साथ सुनती हैं, ये गाना आपके लिए भी था। जयंतन मीना जी थैंक यू, हमेशा ही साथ देते हैं और आप बस यही लिखते हैं कि कोई भी गाना हमारे नाम कीजिए। तो चलिए अगला गाना बिल्कुल आप दोनों के लिए होगा मेरी ओर से। मीरा आप भी सुन रही हैं, आई थिंक आप पोर्टसमाउथ में हैं, सुस्वागत है आपका। हमारे साथ है हमारे राजेश जी, बहुत खूबसूरत आपका मैसेज है, कहते हैं आपको खुशहाल और उज्जवल धूप वाला रविवार की शुभकामनाएं। क्या बात है, मैं आपको कोई तोहफा नहीं दे सकता सिवाय इसके कि मैं आपको और आपके द्वारा बजाए गए गानों को सुनता रहूं। सच कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सुनते हैं हमारे लिए वही काफी है और वही तो हमें बनाता है नंबर वन, यानी कि एक अच्छी बात होती है, प्राउड मोमेंट होता है कि हम जो मेहनत करते हैं उसे आप सुनते हैं और आप सुनते इसीलिए हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। सो थैंक यू, यूं ही साथ देते रहिए। कैंट में सलमा जी हैं, मिस्टर नरेंद्र पाठक हैं हमारे साथ, चेशम में एजाज सुन रहे हैं, कनाडा टोरंटो में उल्लास है, हमारे भारत गंगाराम हमारे साथ है, मिस्टर मिसेस चियांग हमें सुन रही हैं, हैरो में दिव्या है, सहर है, मानु जी हैं, हैरो में महेंद्र बजारिया जी हैं, क्रॉइडन से महेंद्र पटेल, शरफून सुन रही हैं, तोची है, जासू जी है, अजन है हमारे साथ। इसके अलावा कुछ और भी मैसेजेस हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता है और उन्होंने नाम भी नहीं लिखे, तो अब क्या करूं। स्लाव में सुरजीत जी हैं, मिसेस शेख है, नरेंद्र बागिया जी आज आपने चार लाइन एक बार फिर से हमारे साथ शेयर किए और कहते हैं ये गुलजार साहब की लिखी हुई है और इसमें लिखा है कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ क्योंकि ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है, कौन किसी से चाह कर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। ये सारी लाइनें आपने अपने सारे दोस्तों को डेडिकेट की हैं, चलिए हमारी ओर से भी आपके सभी और हमारे सभी दोस्तों को डेडिकेटेड। एंड ऑफ कोर्स मीनल त्रिवेदी आप भी हमें सुन रही हैं, तो भाई मैसेजेस का सिलसिला धड़ाधड़ बढ़ता जा रहा है। रोशनी वियाना से अनिल सोनी जी, रीडिंग से रुकैया जी, सभी का धन्यवाद है। और अब और मैसेजेस पढूं इससे पहले मैं आपको एक गाना और सुनवाती हूँ, मेरी ओर से ये गाना भी आप सबके लिए, और इस बार आवाज किसकी है। Feel good track brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. तो गाने में इस बार आवाज है हम सभी के फेवरेट एसपी बाला सुब्रमण्यम की। ये है Like a Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: यस साजन फिल्म जब आई थी तो सुपर ऊपर हिट हुई थी, मैंने भी देखी थी और मुझे भी ये फिल्म अच्छी लगी थी। नदीम श्रवण का म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और पॉपुलर भी हुआ था।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: तो अमिता जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए, आप हमेशा ही हमारा साथ देती हैं। निर्मला जी कहती हैं कि भैया रेडियो नंबर वन है तो क्या हुआ, लिसनर भी तो नंबर वन है। अरे भाई, इसमें कोई शंक और शुबा ही नहीं है, आप सभी तो नंबर वन है, तभी तो हम नंबर वन बने हैं। सो थैंक यू निर्मला। हिना जी थैंक यू, स्वागत है आप सभी का। और अब मैं आपको वो गीत सुनवाने वाली हूँ, एक ऐसा गाना जो जब बजता था तो लोगों की आंखें नम हो जाती थी, और इस गाने ने इतनी पॉपुलैरिटी पाई कि जिसने इस गाने को गाया उसको उन्होंने बहुत हिट बना दिया, उनकी लाइफ बदल दी, और ऐसा एक भी शो नहीं रहा उनका कि जब इस गाने की फरमाइश ना आई हो। कई गाने हैं लेकिन एक गाना आप सभी ने सुना होगा जिसे बजाने वाली हूँ, और क्योंकि जिन्होंने वो गाया है उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। अब पहेलियाँ नहीं बुझाती, बता देती हूँ, बात कर रही हूँ पंकज उधास की, और उनका गाया हुआ वो गाना कौन सा बताइए। समझ गए ना, यस वही गाना सुनाने वाली हूँ क्योंकि आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन मखमली आवाज वाले पंकज उधास जन्मे थे।
1: ये है लाइका रेडियो।
0: तो उनके जन्मदिन पर उनका गाया हुआ वो सुरीला गीत बजेगा आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Ritu Sharma.
2: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
2: हमजा समोसास 3 for 10,
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
2: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
2: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
2: While stocks last,
4: this Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio. You.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
8: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
7: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
8: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
7: Join us for a mesmerizing night of soul music and the magic of a true Mehfil
8: on Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
7: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner Laika Radio.
9: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
10: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
9: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
1: लाइक अ रेडियो।
11: Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
13: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
14: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
11: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
15: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें Leica Radio Sales on 0116 471 0697 या email करें sales@leicamedia.co.uk.
11: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Across the Leica Radio Network, this is Ritu Sharma.

0: आनंद बख्शी की कलम से निकला हुआ ये गाना बहुत लोगों को तब भी रुला गया था और आज भी बहुत लोगों की आंखों को नम कर गया है। फरीदा जी, अमर जी, सहर जी, मिसेस चियांग और हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं क्या गाना है, हमारी आंखें भर आई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस धुन को सजाया था और आवाज थी मखमली पंकज उधास की। मखमली आवाज उनकी आवाज को कहा जाता था। आज ही के दिन जन्मे थे लेकिन अब पंकज उधास इस दुनिया में नहीं है। 2024 में 72 की एज में इस दुनिया को छोड़कर चले गए लेकिन अपने काम के लिए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे अवार्ड जीते। उनके भाई मनोहर उधास भी एक बहुत ही जाने माने सिंगर है। कुछ और बातें उनके बारे में आपको जरूर बताऊंगी क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो आप हमारा साथ देते रहिए, प्रोग्राम के अगले हिस्से में सुनवाऊंगी जोड़ी नंबर वन और आज की जोड़ी कौन सी है बताऊंगी। लेकिन फिलहाल
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आपको बता दें कि आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टकास।
2: Laika Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Laika Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Laika Radio.
0: So gold rate is 109.5 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
2: Laika Radio. Yeah, yeah.
1: Laika Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आपको बता दें कि आज रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में मैच है और ये मैच शुरू होगा अब से बस थोड़ी ही देर में यानी कि 11 बजे से और मैच का हाल हम आपको बताएंगे ना, आप बस हमें सुनते रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
3: ये है
2: Laika Radio.
4: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039 635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
3: In Dubai.

0: छुपाना भी नहीं आता। आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। क्या धुन बनाई है अनु मलिक ने और क्या गाया है पंकज उधास ने। पंकज उधास जिनकी की आज बर्थ एनिवर्सरी है। और पंकज उधास ने बॉलीवुड में तो सिंगिंग की ही है, लेकिन बेसिकली वो एक गजल सिंगर थे और उनको जानने वाले या उनके जो फैंस हैं उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की और गजल्स जो सिर्फ महफिलों में गाई जाती थी उन्हें अपनी आवाज के थ्रू आम जनता तक पहुंचाया। कई गजल बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो नाम फिल्म का जो गाना था उसने इनकी जिंदगी बदल दी। और एक इंटरव्यू में पढ़ रही थी पंकज उधास का, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मेरा शो नहीं गया जिसमें लोगों ने मुझे चिट्ठी आई है गीत की फरमाइश ना की हो। जब भी मैंने परफॉर्म किया पीछे से आवाजें आती थी कि पंकज जी वो गीत सुनवाइए। और इसीलिए आज जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी है तो उनका गाया वो सबसे पॉपुलर गाना तो बनता था। आज हमने आपको गीत सुनाया और आप सबकी आंखों में आंसू भी आ गए, उसके लिए माफी चाहूंगी। लेकिन कुछ गाने होते ही ऐसे हैं जो हमें अंदर तक महसूस कराते हैं। और ऐसे ही और भी बहुत सुंदर गाने हैं, मुझे उनकी कई गजलें भी बहुत पसंद है। लेकिन आज मैंने उनका एक और गीत सुनवाया जो मेरा और आप सभी का फेवरेट था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया, उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिले। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, न सिर्फ वो एक सिंगर थे बल्कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान भी थे। और उन्होंने थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए एक पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ थैलीसेमिक यूनिट के माध्यम से बहुत काम किया। और वो अक्सर ही कैंसर और अन्य चैरिटी कार्यक्रम्स के लिए फंड जुटाने के लिए शोज भी किया करते थे। तो आज हमने आपको पंकज उधास की आवाज़ के कुछ गीत सुनवाए, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी। और अगर आज आपकी भी बर्थ एनिवर्सरी, आपकी भी बर्थडे है माफ़ कीजिए, तो आपको हमारी ओर से ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और आज की हमारी जोड़ी नंबर वन है शम्मी कपूर और माला सिन्हा की जोड़ी। हमारे राजेश जी कहते हैं कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने शम्मी कपूर और माला सिन्हा की कोई भी फिल्म देखी है। अरे तो अब मैं गाने सुनाऊंगी तो आपको याद आएगा कि शायद देखी है। चलिए देखते हैं जो गाने मैंने चुने हैं उन फिल्मों को आपने देखा है या नहीं। शुरू करते हैं जोड़ी नंबर वन का सिलसिला आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि भाई अगर आज आप भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं तो आपको एक पाउंड के बदले में 127.5 भारतीय रुपए मिल जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आप SBI योनो ऐप के थ्रू, बैंक के थ्रू या उनके ऐप के थ्रू पैसा भिजवाते हैं 1000 से ज्यादा तो आपको 75 पाउंड्स का वाउचर मिल जाएगा जब भी आप कराएंगे। और अगर आप 2000 पाउंड से ज्यादा मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपको मिलेगा 1 ग्राम गोल्ड कॉइन। और टर्म्स एंड कंडीशंस तो अप्लाई रहेंगी ही।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across

0: ये थी हमारी आज की जोड़ी नंबर वन का पहला गाना, लता जी और मन्ना दा की आवाजों में। फिल्म का नाम उजाला। 1959 में आई थी ये फिल्म। और आपको बता दें कि आज की जोड़ी नंबर वन में साथ में बहुत सारी फिल्में नहीं की हैं, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है ये दोनों दो फिल्मों में साथ में नजर आए हैं। एक तो थी उजाला, जिसका गीत मैंने आपको सुनवाया, और दूसरी फिल्म का गाना मैं अब आपको सुनवाने ही वाली हूँ। और उस फिल्म का गीत हमारे मितुल पटेल जी एक खास गीत सुनना चाह रहे थे, और आज मैं भी सोचकर आई थी कि वही गाना बजाऊंगी, लेकिन कल ही किसी ने वो गाना प्ले किया है तो मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने दूसरा गीत चुना है। लेकिन मितुल जी, आपकी पसंद का गाना मैंने नोट कर लिया है, ज़रूर आने वाले शोज में जल्दी ही बजाऊंगी। लेकिन आपको बता दूं कि ये माला सिन्हा इस फिल्म में और इस गाने में बहुत सुंदर लगी हैं, और कई फिल्मों में बहुत खूबसूरत लगी हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस रही हैं। हाइट ज़रा कम थी लेकिन एक्टिंग कमाल की थी। आपको पता ही है कि माला सिन्हा नेपाल से आती हैं, एक नेपाली क्रिश्चियन फैमिली से आती हैं, और पहले इन्हें आल्डा नाम दिया गया था इसीलिए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम माला सिन्हा रखा, और क्या खूब काम किया, और मुझे बहुत पसंद है। अनपढ़ फिल्म हो या इनकी और भी कितनी फिल्में हैं, किसी दिन इन्हें भी यादें में लेकर आऊंगी। लेकिन फिलहाल तो समय हो गया है आज की जोड़ी नंबर वन का दूसरा गीत सुनवाने का। और हमारी अमिता जी जासू जी का कहना है कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे नाम कीजिए। बिल्कुल, आपके नाम किया, और अगला गीत भी आप सभी के नाम पर मेरी ओर से।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो भाई, आगे बढ़ने से पहले और अगला गीत बजाने से पहले गुरुदेव गांजा आपको भी थैंक यू कह दे। आप गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, यस अभी बिल्कुल गुड मॉर्निंग है और आप शो को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आपको ये भी बता दें कि अगर आप किशोर कुमार के फैन हैं तो यहाँ तो हम आपको उनके गाने सुनाते हैं, लेकिन अगर आप स्टेज पर लाइव उनके गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए प्रोग्राम है जिसका एड आप हमारे यहाँ से सुन ही रहे हैं। किशोर कुमार के फैंस को बुला रहे एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट हो रही है, जिसमें केतन, इंद्रानी, संजय और 515 बैंड परफॉर्म करने वाले हैं, और ये होने जा रहा है फ्राइडे 19 जून को एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल में, एसेक्स में। और इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स कौन है? जस हम, लाइका गोल्ड रेडियो।
1: दिस इज लाइका रेडियो। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और अब वो गाना जो ऑब्वियस था बजेगा ही, क्योंकि इस गाने में हमारी जोड़ी नंबर वन जो है, हालांकि इस फिल्म में और भी बहुत अच्छे गाने हैं, लेकिन उसमें दोनों शायद नहीं है, इसलिए ये गाना सुनिए।

0: हमारी आज की जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना जिसे हम डेडिकेट करना चाहते हैं अमिता जी और हैरो से दिव्या जी के नाम पर। आज की जोड़ी थी माला सिन्हा और शम्मी कपूर की जोड़ी। और संध्या शेनफील्ड में आप सुन रही हैं। आपने सही कहा है कि माला सिन्हा के फादर नेपाल से थे और फिर वो बाद में वेस्ट बंगाल में सेटल हो गए थे जहाँ पर माला सिन्हा का जन्म हुआ था। तो बस बहुत ही खूबसूरत हीरोइन रही है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। और शम्मी कपूर की तो क्या बात है, कमाल के एक्टर हैं, हमारे बहुत सारे साथियों के फेवरेट है। और इसीलिए सोचा क्यों ना आज इस जोड़ी को जो ऑलरेडी नंबर वन है नंबर वन बनाया जाए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बाउल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
2: The Ritu Sharma Show on Leica Radio. Leica Radio. Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026. This is Ritu Sharma.

0: क्या गाना है किशोर कुमार और आशा जी की आवाजों में। और हमारी मिसेस चियांग कहती हैं कि ऋतु जब साथ हो आप हमारे तो टाइम का पता ही नहीं चलता। इसका मतलब मिसेस चियांग आप ये गाना मुझे डेडिकेट करना चाहती हैं, तो ठीक है मैं आपको थैंक यू कह देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हमें आपका साथ अच्छा लग रहा है, तो ये जानकर मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट। और अगला गीत सुनाने से पहले याद दिला दें कि भाई लाइका एक्स्ट्रा का एक और एपिसोड आ चुका है और इस बार का टाइटल है इंडिया वीक शोकेस। और आप हमारे लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट को सुन सकते हैं अमेज़न पर जाकर, यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर और सभी लीडिंग जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं सभी जगह लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है। और इस बार के एपिसोड को होस्ट किया है अनुज राडिया ने। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. ये है Leica Radio.
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
5: This Eid al-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: 0208574 8410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Frankie Goes to Bollywood is back, bigger, bolder and more dazzling than ever. Dive into a breathtakingly colorful journey of romance, epic songs, spectacular dance sequences, heroes and villains, lavish costumes and sweeping sets. This is the story of being British in Bollywood. With brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand, this show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surrenderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the new Theatre Peterborough, 5th to the 9th of May. For tickets and more info, click newtheatre-peterborough.com. Radio partner, Leica Radio.
9: Leicester, it's time to celebrate.
10: Rouge Millers brings you the ultimate 50 fest.
9: 50 days of giveaways worth a huge £50,000. We're talking gold coins,
10: LED TVs, designer saris, and over 50 luxury hampers up for grabs.
9: Shop and you're automatically entered into our lucky draw or discover hidden vouchers as you go.
10: Plus, instant rewards on fresh fruit and veg. Spend £5 and get a free hand wash.
9: £10 for a food chopper. £25 for a teapan or kadhai pan.
10: Rouge Millers, Melton Road, Leicester. 50 Fest, every shopper's a winner.
11: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी ना यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड TV, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: इफ आई एम गोइंग आउट ऑन माय न्यू पैडलबोर्ड, द लास्ट थिंग आई एम टेकिंग इज माय फोन, राइट? बॉयंसी एड फाइन, बट मोबाइल, माय होल लाइफ ऑन दैट फोन, व्हाई वुड आई रिस्क लूजिंग इट इन द Coast Guard, help!
6: Okay, help's on its way.
7: Grab my hand!
8: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
9: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
10: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. On this week's Leica Extra podcast, we bring you a special on India Week, hosted by Anuj Radia.
11: Saw Calpol Children's Medicine, and there was a little Indian girl on the box. Now, for me, that's a big change in how we're identifying and seeing ourselves. When my parents were shopping in Boots at that time for me, they would never have seen a little Indian girl on a box.
10: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
12: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: जी लता जी की आवाज में एक और शानदार गीत आपको सुनवाया, जो थी अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन। और आपको पता है कि नेटफ्लिक्स पर अब धुरंधर का पार्ट 2 आ गया है, और बस अगर आपने उस फिल्म को नहीं देखा है तो अब देख डालिए। मैंने तो कल एक बार फिर से देखी, अच्छा लगता है, पता ही नहीं चलता कब फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप नेटफ्लिक्स पर अब धुरंधर देख सकते हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज आपको 1 पाउंड देगा 128 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 109.56 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: Leica Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो IPL का मैच रॉयल चैलेंजर बंगलुरु के बीच और पंजाब किंग्स के बीच में है आज, जो शुरू हो चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पहले खेलते हुए 2 विकेट गंवाकर 10.2 ओवर्स में अब तक 102 रन्स बना लिए हैं। और आगे का मैच क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे, आप हमें सुनते रहिए।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: Ye hai Leica Radio.
2: Leica Radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.

0: लीजिए दो गाने हमने आपको सुनवाए बैक टू बैक एंड थैंक यू अमिता जी, एजाज जी, दिनेश पोपट जी, संध्या मावसर एंड शरफुल, आप सभी हमारे साथ दे रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं और जो साथी घर में, बाहर, काम पे, गाड़ी में, शॉप में, गार्डन में, काम पर, जहाँ कहीं भी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस शो में। आपको बताते चलो कि मुझे कहते हैं ऋतु शर्मा और ये है आपका मनपसंद लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और आज है 17th मई, संडे का दिन और इस आवर में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनवाती हूँ और हम अपना थ्री वर्स गेम भी खेलते हैं जिसके बारे में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करूंगी अधिक मास की। आज हमें राजीव पटेल जी और अर्जुन जी ने याद दिलाया है कि आज से अधिक मास की शुरुआत हो रही है। डेट्स एक दो आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन आज से अधिक मास शुरू हो रहा है और ये एक एक्स्ट्रा मंथ, अधिक मास यानी कि एक एक्स्ट्रा मंथ होता है। और ये क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो शॉर्ट में बताती हूँ कि जो नॉर्मल कैलेंडर होता है ना वो सूरज सन पर आधारित होता है। जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो उसमें 365 डेज होते हैं और उसके हिसाब से हमारा पूरा ईयर बनता है। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर होता है वो चंद्रमा यानी मून के कारण बनता है और मून का एक चक्कर जो होता है, जो लूनर ईयर होता है, वो 354 डेज का होता है। और इसके चलते 365 और 354 का जो अंतर होता है वो 11 दिन का अंतर होता है हर साल। और अगर इस अंतर को ठीक नहीं किया जाए तो जो त्योहार है और जो मौसम है उनका तालमेल बिगड़ जाएगा, जैसे कि होली फिर सर्दियों में आने लगेगी और त्योहार और बदल जाएंगे। तो इस 11 दिन के अंतर को पाटने के लिए हर 32 यानी 16 डेज और 8 घंटे के बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है जिसे अधिक मास कहा जाता है और इसे पुरुषोत्तम महीना भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी हफ्ते के दिन हैं या जो महीने हैं सभी किसी ना किसी देवी देवता के नाम पर समर्पित है। और क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा महीना है तो इसीलिए इसे देवों के देव विष्णु जी के नाम पर समर्पित किया गया है और इसीलिए इन्हें इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और लोग कभी कभार, कुछ लोग इस पूरे महीने व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सात्विक रहने का व्रत लेते हैं। और क्योंकि ये अतिरिक्त मास होता है तो इसमें शादी विवाह या फिर मुंडन कह लीजिए या फिर नया ग्रह प्रवेश कर लीजिए, नया बिजनेस शुरू कर लीजिए, वो सब चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं और कहा जाता है कि ये एक्स्ट्रा मंथ है तो इस दिन आप, इस महीने आप सिर्फ ईश्वर का ध्यान कीजिए, उनका पूजा पाठ कीजिए। इस महीने से जुड़ी और भी सारी बातें हैं, कुछ कथाएं भी हैं, लेकिन वो आज नहीं बता रही हूँ। अभी मुझे आपको बताना है हमारे आज के तीन वर्ड्स कौन से हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 1 pound आपको देगा 127.5 भारतीय रुपए और आपको ये ट्रांसफर करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा अगर आप एक हफ्ते के अंदर 1000 pound से ज्यादा ट्रांसफर करवाते हैं तो आप 75 pound का वाउचर जीत सकते हैं और अगर आप 2000 pound से ज्यादा ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको मिल सकता है 1 gram गोल्ड कॉइन, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank.com.

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में वक्त फिल्म से लिया था यह गाना, म्यूजिक बाय रवि। और आप जानते हैं कि इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं महेंद्र कपूर। लाइक अ रेडियो। और चलिए अब शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला और सुनवाते हैं आपको पहला गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मदारी फिल्म से लिया है ये गाना। हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गीत मुकेश जी और लता जी के आवाज़ है और ये गाना डेडिकेट करते हैं करसन पिंडोरिया जी आपको, अमिता जी स्वीटी कारा। आपने इस गीत को पसंद किया है और ये था आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Ritu Sharma.
0: तो चलिए अब बताते हैं कि थ्री वर्स गेम चल रहा है और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिया है। इससे पहले कि ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गीत बजाऊं, आपको बता दूं कि श्रेया पंड्या किंग्सबरी से, मनीषा शाह जया जी लूटन से, शरफून, सरस्वती पंडित अनिल जी इल्फट से, निशा, केश नथवानी जी हाजरा जी, भरत गंगाराम, उल्लास शेखर जी, आशीष देसाई, नीलकंठ वोकिंगम से, दिव्या जी हैरो से, नरेन पटेल, दामिनी बहन, उषा घोड़ा एजवियर से, दिनेश पोपट जी, रोशनी जी, आशिमा मैनचेस्टर से, करसन पिंडोरिया जी, ईशा जी सहर तोची, इतेश कुमार एंड कुकी, आप सबने आज के थ्री वर्स गेम वाले गाने को बिल्कुल सही पहचाना है। करसन पिंडोरिया जी आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। तो थ्री वर्स गेम वाला गाना भी सुनवाऊंगी थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले एक और ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गीत और इस बार आवाज गीता दत्त की।
3: दिस सुपरहिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस। डिस्कवर द सीरियस डिलिशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा।

0: करता हूँ।
1: यस लता जी और रफी साहब की आवाज में ये था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना 1964 की फिल्म और नौशाद का म्यूजिक, जिसे आप में से ज्यादातर सभी साथियों ने सही सही पहचान लिया।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
3: ये है Leica Radio।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिल सकेंगे 128 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: So Gold Rate is 109.5 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
2: This is Leica Radio. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो आपको बता दें कि आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में मैच हो रहा है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पहले खेलते हुए 4 विकेट गंवाकर 20 ओवर्स में 222 रन्स बनाए हैं। और अब बारी है पंजाब किंग्स की, जिनकी बैटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी और इसका हाल हम आपको बताते रहेंगे। हमारे यहाँ से बताया जाता रहेगा, आप हमें बस सुनते रहिए।
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: और लीजिए, अब जाने की बेला आ गई है। आखिरी गीत होगा जो हमें लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार अनुराग आपका साथ देंगे गोल पर, फजीला आपके साथ होंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर और अनिका होंगी मिडलैंड्स पर। आपको बताते चले कि अगर आप बैक टू बैक क्लासिक सुनना चाहते हैं तो आप हमारा लाइका गोल्ड 2 ऑनलाइन सुन सकते हैं। 90s के गीत सुनना चाहते हैं तो लाइका रेडियो 90s सुनिए ऑनलाइन, या फिर पंजाबी गीत सुनना चाहते हैं तो लाइका रेडियो पंजाबी भी है आपके लिए। जो मर्जी सुनिए, जब भी समय मिले साथ जरूर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीक, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
2: ये है लाइका रेडियो।

0: लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी।
1: Hi guys, this is Arbaaz Khan.
2: This is Alka Yagnik.
3: Hey everyone, this is Arman Malik here.
4: Hi guys, this is

0: Disha Basmati Rice, available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
2: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
1: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
2: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadon, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadon, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
4: Leica Radio.
5: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
6: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
7: खुद से भी ज्यादा।
5: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
7: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
5: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
3: This is the largest commercial Asian radio network in the UK, Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: गुड आफ्टरनून. बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म बाल ब्रह्मचारी, 1996 की फिल्म थी, और दूसरा गीत लावारिस से 1981 की फिल्म. और दोनों गीतों को सुनकर क्या आपको कुछ याद आया? ये फिल्में किसने बनाई थी? अगर नहीं याद आया है तो सरिता ज़रूर बताएगी, लेकिन ज़रा पहले आपका हाल चाल तो पूछ लूँ. कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी हैं आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें. ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून. इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप. लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू एंजॉय. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता आप ही के लिए. भाई आज के प्रोग्राम का पहला गीत सुनकर तो ज़रूर आपके पैर भी थिरके होंगे, आपने भी थोड़ा बहुत तो डांस कर ही लिया होगा. और एक अरसे के बाद मैंने इस गीत को प्रोग्राम में जगह दी. उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी पुरानी यादें कुछ ताज़ा ज़रूर हुई होंगी. राइट. और आज के प्रोग्राम के फर्स्ट आवर में कोई वर्ड नहीं है कि एक ही वर्ड पे सारे गाने, क्योंकि जिनकी फिल्मों के मैं गीत आपको सुनवा रही हूँ, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी ज़बरदस्त फिल्में बनाई और उनके सभी गाने बड़े खूबसूरत, और उन्हीं में से मैंने इस आवर को के गीतों को सजा लिया है. यस, प्रकाश मेहरा साहब, जिनका जन्म हुआ था 13 जुलाई को 1939 में और 17 मई 2009 में ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी आज ही के दिन इन 2009. हिंदी फिल्मों के एक निर्माता और निर्देशक थे ये, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. प्रकाश मेहरा का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था और 50 के दशक में इन्होंने अपनी फिल्मी जीवन की शुरुआत एक प्रोडक्शन कंट्रोलर की हैसियत से की थी. सो 1968 में उन्होंने शशि कपूर की फिल्म हसीना मान जाएगी का निर्देशन किया था, यानी डायरेक्ट की थी, और जिसमें शशि कपूर ने ड्यूअल रोल, दोहरी भूमिका निभाई थी. इसके बाद फिर 1971 में मेला आई और ये सिलसिला चलता रहा. इनके बारे में थोड़ी और जानकारी भी मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन पहले ज़रा ये जानकारी दे दें.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you today 127 rupees and 45 paisa. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every week when you spend over £1,000. And a 1 gram gold coin when sending money over £2,000. जी हाँ, 2,000 से ज़्यादा भेजेंगे तो आपको 1 ग्राम सोने का कॉइन मिल सकता है. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, सो देर मत कीजिएगा.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBI UK.

0: पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी।
1: भैया हसीना मान ही जाएगी, इतने प्यार से कोई बुलाएगा तो।
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: और इसी के साथ मैं अपने सभी सुनने वालों को थैंक्स कहना चाहूँगी जो बड़े प्यार से हमें अपना वक्त देते हैं, अपने कान उधार देते हैं और जहाँ भी कहीं मिलते हैं बड़े प्यार से रिसीव करते हैं, बहुत इज्जत भी देते हैं, प्यार देते हैं और एहसास दिलाते हैं कि हमारी पेशकश उन्हें पसंद आती है, हमारे गीत उन्हें पसंद आते हैं, ये जानकर अच्छा लगता है। और वैसे भी हमारी तो अब रेजार फिगर्स जो हैं वो बता रही हैं लेटेस्ट रेजार डेटा कि लाइक गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा सुनने जाने वाला रेडियो है इन लंदन, इन यूके, लंदन में कहूँगी, ग्रेटर लंदन में। सो लाइका ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड स्टिल द नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड रिमेन कंसिस्टेंट विद लाइका गोल्ड नाउ बीइंग लिसन टू longer than any other commercial Asian radio station in the UK according to latest Raja data. So thank you so much and congratulations to you as well ki aapne hame apna samay diya itna aur itna pyar diya aur isi tarah se apna pyar hum tak pahunchate rahe.
2: Ye hai Laika Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
1: तो हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत तो आपने सुन लिया। हसीना मान जाएगी में डबल रोल था शशि कपूर का, जैसा कि मैंने बताया पहले, प्रकाश मेहरा जी ने इस फिल्म को बनाया था। और कौन थे इस फिल्म में शशि कपूर के साथ? बबीता, अमिता एंड यूनस परवेज, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत। और ये गीत मेला से चुना है मैंने, रफ़ी साहब एंड लता जी की आवाज़ें।

0: जी हाँ, ये हमारे भी मिलने का वक्त है, इसलिए आप सभी चले आए हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस आपके मुझे बराबर मिल रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। ये प्रकाश मेहरा जी की दूसरी फिल्म थी जिसमें संजय खान, फिरोज खान और मुमताज ने काम किया था, सचिन भी थे इस फिल्म में, और आर डी बर्मन साहब का संगीत था।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: और कुछ मैसेजेस, और मैसेजेस के उस पार जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म हाथ की सफाई, और ये गाना काफ़ी पॉपुलर है। ये मसाला फिल्म थी एंड सलीम जावेद साहब ने स्टोरी लिखी थी एंड प्रकाश मेहरा साहब ने इसे डायरेक्ट किया था। विनोद खन्ना, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, सभी ने इसमें काम किया था एंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था विनोद खन्ना को, द ओनली नॉमिनेशन फॉर हिम। एंड सिमी ग्रेवाल ने भी काम किया था इस फिल्म में। फिल्म का संगीत बड़ा जबरदस्त था और इस फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी, आनंद जी ने। वेट फॉर द सॉन्ग आ रहा है, बहुत ही प्यारा संगीत।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
4: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Leicester, the biggest celebration of the year is here.
8: 50 Fest at Root Millers, powered by Kalyan Jewelers,
7: Kavya Silks,
8: Rafiq Catering
7: and Jungle Club,
8: Glozo,
7: Mars Dreams
8: and Neslo Estate Agents.
7: Join the fun with games, dancing and live anchoring and walk away with amazing prizes. Spend £50 for 1 kg of ghee or £200 for 15 snacks of sugar.
8: Plus 2,000 more Root Packs hidden vouchers. All our customers are winners. With £50,000 in prizes to be won, this is one event you can't miss. Root Millers on Melton Road, Leicester.
9: Atif Aslam, live in the UK.
10: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
9: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
12: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
9: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
12: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
9: Or sales at leicamedia.co.uk.
13: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
14: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
13: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
15: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: ये है लाइका गोल्ड

फिल्म पूर्णिमा से चुना था मैंने इस गीत को. नरेंद्र सूरी जी ने एक्चुअली डायरेक्ट किया था, लेकिन ये फिल्म इसको असिस्ट किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर थे इस फिल्म के प्रकाश मेहरा जी, और उन्होंने एक गीत भी लिखा था इस फिल्म में. लेकिन ये गीत जो मैंने आपको सुनवाया, ये गीत लिखा था गुलजार साहब ने और कल्याण जी आनंद जी का था संगीत.

0: प्रकाश मेहरा जी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हम एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है अब तक के प्रोग्राम में जितने भी गीत शामिल हुए आप सबने खूब इंजॉय किए होंगे। और ये फिल्म कौन सी थी आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ कि दो गीत जो आपने बैक टू बैक सुने, पहला गीत था फ्रॉम द फिल्म दलाल, ये भी 1993 में बनाई थी प्रकाश मेहरा जी ने, एंड उससे पहले जो आपने गीत सुना वो मोहब्बत के दुश्मन फिल्म से था, और ये फिल्म भी बनाई थी प्रकाश मेहरा जी ने, और उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने इन्जॉय किए। प्रकाश मेहरा जी ने 1973 में जब जंजीर बनाई थी उसका निर्माण और निर्देशन किया था, मतलब प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय हिम, तो ये फिल्म ज़बरदस्त हिट रही थी और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन के जो डामाडोल करियर था उसको पटरी पर ला दिया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ प्रकाश मेहरा का रिश्ता गहरा हो गया और दोनों ने लगातार 7 सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी। फिल्म जादूगर इतना नहीं चल पाई थी इसलिए उनका रिश्ता भी थोड़ा डगमगा गया। प्रकाश मेहरा जी ने बाद में जिंदगी एक जुआ फिल्म बनाई अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म कमाल नहीं दिखा पाई। 1996 में उन्होंने राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को लेकर फिल्म बनाई थी बाल ब्रह्मचारी, जिस फिल्म के गीत के साथ मैंने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया था, बहुत नज़रें लड़ गई हैं, गाना बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन लेकिन ये भी फिल्म ज़्यादा नहीं चल पाई थी, असफल रही। ये उनके निर्देशन की आखिरी फिल्म थी। बाद में उन्होंने दलाल फिल्म का निर्माण किया, ये प्रोड्यूस की थी फिल्म दलाल, एंड जो एक सफल फिल्म साबित हुई, और इंडिया मोशन पिक्चर्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने 2006 में उन्हें लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया था। 2008 में इसी संस्था ने उन्हें प्रोड्यूसर से के रूप में भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। प्रकाश मेहरा जी की कुछ ही एक और फिल्में लाइव, मुकद्दर का सिकंदर का गीत मैं नहीं शामिल कर पाई हूँ अभी तक, तो आई थिंक यस इट्स कमिंग नेक्स्ट, तो आप तैयार रहिएगा, कुछ ही देर में वो गीत आप सब तक पहुँच रहे हैं। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यार से आप मैसेजेस लिख रहे हैं, मैं सबको व्हाट्सएप ही कर रही हूँ वापस, क्योंकि बहुत सारे नाम लेना मुश्किल हो जाता है, तो जिसका नाम मिस हो जाता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मुझे मालूम है कौन से कान कहाँ बैठे सुन रहे हैं। थैंक यू एवर सो मच।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you today 127 rupees and 45 paisas. And it depends ki kitna amount aap transfer kara rahe hain. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every week when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin when sending over £2,000. Terms and conditions apply. So der mat kijiyega.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मुकद्दर का सिकंदर का टाइटल ट्रैक आपने किशोरदा की आवाज़ में सुना. फिल्म में बहुत प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे एंड फिल्म बड़ी कामयाब भी हुई थी. प्रकाश मेहरा साहब ने इसे प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किया था. फिल्म में कादर खान साहब की स्टोरी थी एंड किसने काम किया था आपको मालूम ही होगा. वैसे तो विनोद खन्ना थी, राखी थी एंड उनके साथ साथ रेखा थी, रंजीत थे एंड ऑफ कोर्स मुकद्दर का सिकंदर में ए भी थे. बहुत खूबसूरत फिल्म, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा. और प्रकाश मेहरा साहब की ये फिल्म काफ़ी कामयाब हुई थी और सारे गीत जो थे वो कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किए थे एंड एक गीत प्रकाश मेहरा साहब ने लिखा था, बाकी अनजान साहब ने सारे गीत लिखे थे. एंड अब वक्त इतनी इजाज़त नहीं देगा कि इनकी सारी फिल्मों के सारे गाने सुनवाऊं, पर फिर भी जो मैंने चुने हैं गीत तो उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किए. एक कुंवारा एक कवारी एक कवारा भी इन्होंने ही बनाई थी. खलीफा, हेरा फेरी, खून पसीना. खून पसीना का गीत आई एम प्लेइंग इट इन अ मिनट एंड आखिरी डाकू एंड ज्वालामुखी, देशद्रोही, लवारिस के गाने अच्छे थे. नमक हलाल का गीत एंड शराबी का गीत समझ नहीं आ रही कौन सा गीत मैं आपकी सेवा में पेश करूं और किसे छोड़ दूं. पर चलिए, छोड़ते नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो सुनवाती ही रहेगी सरिता. पहले ज़रा ये बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा का न्यू एपिसोड क्या कहता है. दिस इज़ अबाउट इंडिया वीक शोकेस एंड होस्टेड बाय अनुज राडिया. टॉकिंग पॉइंट्स हैं इसके. लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26th of May टिल 31st. एंड जो पुराने एपिसोड्स हैं वो भी अगर आप देखना चाहते हैं, लाइक होम स्कूलिंग के बारे में डिबेट एंड विल्स एंड प्रोबेट, वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, तो आप देख सकते हैं लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पर. अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: फिल्म गवाही से चुना था मैंने इस गीत को, और पहला गीत था फिल्म मोहरा का। आज हमने याद किया पंकज उदास जी को भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। इन दोनों गीतों के जरिए बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत जिनकी वेलवेटी आवाज़ थी, और इनकी प्राइवेट गजल्स भी और इनके प्राइवेट गीत भी बहुत बहुत कामयाब हुए थे। आपको याद हो गए कि आहट आई थी इनकी एक एल्बम, उसके बाद मुकर्रर, तरन्नुम, महफिल, देन आफरीन। आई रियली लाइक्ड आफरीन की सभी के सभी गज़लें। महेश भट्ट साहब ने नाम में चिट्ठी आई है इनसे गवाई थी, और आपको मालूम है उस चिट्ठी ने कितना कितना कितना लोगों के दिलों में राज किया था और बहुत पसंद किया गया था इस गीत को। एंड इसके बाद इन्होंने बहुत सारे फिल्मी गीत गाए हैं और हर गीत में इनकी आवाज़ को अप्रिसिएशन मिली। वैसे तो बहुत से गीत हैं, लेकिन एक गीत जो इनका बहुत पॉपुलर था, घुंघरू वाला, घुंघरू टूट गए। वैसे तो शराब पीने की चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता पिया करो, ये सारे गाने सारी गज़लें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन देखते हैं वक्त कहाँ तक इजाज़त देता है। आइए अब आगे बढ़ें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई अगर आप इनके जरिए आज पैसे करवाना चाहते हैं ट्रांसफर, तो 1 British sterling pound can get you 127 rupees and 45 paisas. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a 75 pounds voucher every week when you send over 1000 pounds and also a 1 gram gold coin when sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: राइट अब मैं आपको चॉइस दे रही हूँ दो गानों की, क्योंकि महेंद्र कपूर साहब के ये दोनों ही गीत बहुत खूबसूरत हैं और एक ही फिल्म से हैं। फिल्म का नाम धर्मपुत्र था और इस फिल्म का एक गाना है आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए, दैट इज ए, एंड दूसरा गीत है भूल सकता है भला कौन ये प्यारी आंखें। इनमें से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, ए तुम्हारी आंखें या फिर बी आज की रात? यह या मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको कि भूल सकता है भला कौन, ये गीत है ए, और बी है आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए। जो भी आपको पसंद है जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता दें।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.

0: ऐसे बहुत से गीत और गजलें हैं जो पंकज जी ने गाए और आज भी हम जब सुनते हैं तो उनकी याद ज़रूर आती है। बहुत खूबसूरत वेलवेटी आवाज़ उनकी, पंकज जी की। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 1951 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। चाहे वो दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा अमर रहेगी।
1: Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Leica Radio. और भी अब जो गीत मैं सुनवाने जा रही हूँ उसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? वो ये कि सज्जन जी ने इस फिल्म में काम किया था। आज उनकी भी डेथ एनिवर्सरी है, उन्हें याद कर रहे हैं हम। एंड सज्जन जी वॉज बॉर्न इन जनवरी 15, 1921 इन जोधपुर एंड हिज फुल नेम वॉज सज्जन लाल पुरोहित एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम जसवंत कॉलेज इन जोधपुर बट ही हैड desire to become a lawyer, not an actor. पर वो पोइट्री में भी उनका दिल था एंड उन्होंने बहुत से गीत भी लिखे, बहुत सी स्टोरीज भी लिखी। सज्जन शोड हिज टैलेंट व्हेन ही रोड डायलॉग्स फॉर मीना इन 1944 एंड लिरिक्स फॉर दूर चले इन 1946 और काबुली वाला में भी इन्होंने काम किया था। इन्होंने बहुत से साइड हीरोज या करेक्टर रोल्स किए हैं, तो काबुली वाला का मैंने एक गीत चुना है, उम्मीद करती हूँ आप जरूर पसंद करेंगे।
2: Is Leica Radio across the Midlands.
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
3: Wo aankhein thi dilbar ki ya nargis-e-mastana dekhe hue

0: Tasty Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: प्यास से दिल, ये था फिल्म का नाम। 1974 की फिल्म थी। महेंद्र कपूर साहब का साथ कौन दे रही थी, क्या आपने आवाज पहचानी? अगर पहचानी तो मुस्कुरा दीजिए। यस सरिता, हमें पता है। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, जगजीत कौर की आवाज थी। बहुत प्यारा सा गीत था और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। अब आगे बढ़े।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: राइट, अगर आप पैसे आप भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो एक पाउंड के बदले आपको इंडियन रुपीस मिल सकते हैं 127.95, पाकिस्तानी रुपीस 371.32, श्रीलंकन रुपीस 436.95, बांग्लादेशी टका 163.60 एंड अफगानी 84.21 और US डॉलर्स 1.33।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Radio. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो इस वक्त गोल्ड का रेट है 109 pounds and 56 pence पर ग्राम।
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
3: ये है
2: Leica Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: इस वक्त मैच चल रहा है दिल्ली में और ये है 62nd मैच ऑफ IPL राजस्थान रॉयल्स एंड दिल्ली कैपिटल्स के बीच। राजस्थान रॉयल्स ने बनाए थे 193 रन्स और उनके 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे एंड अभी दिल्ली कैपिटल्स खेल रहे हैं। 16.2 ओवर्स में उन्होंने बना लिए 153 रन्स और 4 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स नीड 41 रन्स इन 22 बॉल्स। व्हाट डू यू थिंक, बना लेंगे या नहीं? चलिए देखते रहिए आप, आंखें वहां लेकिन कान इस तरफ।
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: Yeah. Leica Radio.
1: Another beautiful song sung by Mahinder Kapoor saab. Ye is hafte ke hamare आर्टिस्ट ऑफ द वीक भी थे, लेकिन मुझे महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में गाए हुए कुछ ही गाने बहुत पसंद हैं। उन्हीं में से मैंने चुना है इस गीत को। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। आपके मैसेजेस के लिए तहे दिल से आप सब की शुक्रगुजार हूँ।

0: भी छोड़कर कहीं नहीं जाना है क्योंकि अभी सैंडी आ रहे हैं और सैंडी का आपने साथ निभाना है। अभी अभी मुझे मैसेज मिला है और ये मैसेज मरियम ने लिखकर भेजा। लिखती हैं, हेलो एंड आई एम इन केनिया इन मुंबासा लिसनिंग टू योर स्वीट वॉइस एंड प्लीज कैन यू प्ले द सॉन्ग फ्रॉम सागर फॉर ए स्माइल। वी आर इन द कार नाउ एंड इफ यू कैन प्ले वी विल बी वेरी हैप्पी। आई एम रियली सॉरी आई वॉन्ट बी एबल टू प्ले योर सॉन्ग बट थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। और आपके साथ साथ मेरे ढेर सारे साथियों ने मैसेजेस भेजे हैं, कोई कीनिया में सुन रहा है तो कोई टोरंटो में सुन रहा है, कोई वैंकूवर में सुन रहा है, कोई यहाँ लंदन में सुन रहा है, कोई बर्मिंगम में एंड मिडलैंड्स में सुन रहे हैं, जो अगर आप मैनचेस्टर में सुन रहे हैं, जहाँ भी बैठे आपने मुझे मैसेजेस भेजे और इन्जॉय किया प्रोग्राम को, उन सबका मैं थैंक्स करना चाहूँगी। और जो साइलेंटली प्रोग्राम सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, गीतों को इन्जॉय करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अगली मुलाकात कल होने वाली है। जी हाँ, मैं आई विल बी सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मबट बिटवीन 1 and 4, तो कल भी मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। पर पहले आएंगी काजल, फिर आएंगे रवि शर्मा जी और फिर आएगी सरिता। इसी तरह से वक्त बीता रहता है। बाय, टेक केयर।
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me.
3: Southall Travel, auto protected.
4: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
5: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs, sirf $24.99.
4: Hamza Samosas 3 for $10.
5: Top Star Fried Onions, only 99p.
4: Suhana Masalas 2 for $1.50. Ramdev Namkeen 2 for $1.49.
5: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
4: Kesar Mango Pearl 149. Full Makhana 2 for $5. Falcon Cash and Carry,
5: 82 Assistant Street, LE12J. You, yeah, Rolex Hill LE54UN.
4: While stocks last.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: 105 शोज पूरा करे પછી હવે લેસ્ટર માં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી નાટક
10: જેઝ એન્ટરટેનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી
9: લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યનો ફૂલ ડોઝ 28 જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટર માં બે શાનદાર શોઝ બપોરે 8 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ટિકિટ્સ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk સખણા રેજો હસબન્ડજી
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
12: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
13: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
14: Okay, help's on its way.
15: Grab my hand!
13: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
16: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
17: Hey!

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी ना यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, ई 392 एंड TV, प्रेजेंटेड बाय TravelUp.com, पावर्ड बाय नैफको फूड्स।
5: दिस इज लाइका रेडियो, पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क। This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
6: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: Leica.
1: नशे सी चढ़ गई हो फ्रॉम द मूवी बेफ्रिके बेफिक्रे वाणी कपूर एंड माय फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह. ओह माय गॉड आई जस्ट लव रणवीर सिंह. क्या एक्टिंग है, क्या एटीट्यूड है. आई एम श्योर वी ऑल वॉच धुरंधर 1 and 2. ही वॉज ब्रिलियंट. बट डिड यू नो दी कि रणवीर सिंह को ब्रेक कैसे मिला. हाउ डिड ही एक्चुअली ब्रेक इन टू बॉलीवुड एंड हाउ डिड ही गेट हिज फर्स्ट ब्रेक. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. कुछ मैं अभी बताता हूँ एंड कुछ ड्यूरिंग द शो बताऊंगा. सो व्हाट हैपेंड वाज रणवीर सिंह ऑफकोर्स वाज गोइंग थ्रू दीज ऑडिशंस एंड देन देयर वाज दिस राम लखन थीम पार्टी एंड रणवीर सिंह जस्ट वेंट ऑल आउट एंड ही स्टार्टेड डांसिंग ऑन द फेमस नंबर AGOG एंड दैट्स व्हेन द कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा स्पॉटेड हिम एंड सेड यार इस बंदे में स्पार्क है एंड देन शी रिकमेंडेड रणवीर सिंह टू आदि चोपड़ा एंड देन ऑफकोर्स ही वेंट थ्रू द स्क्रीन टेस्ट एंड देन ही गॉट सिलेक्टेड. बट एक ट्विस्ट है इस कहानी में. वेल करण जौहर डिड नॉट अप्रूव ऑफ रणवीर सिंह एट दैट टाइम एंड ही वॉज लाइक कौन है ये, क्यों इसको कास्ट कर रहे हो. मोर ऑन दिस विद मी वीर. आई एम इन फॉर द लवली मेसा ऑन संडे रैप गिविंग यू कंपनी टिल 10 PM. सो स्टे ट्यून्ड ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
0: दिस इज लाइक अ रेडियो. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling today could get you up to 127.5 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every week when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin when you're spending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Your Sunday evenings with Mesa. Proudly sponsored by tickets2india.co.uk. For the best rates, book online or call 020-8518-9100. Bringing India closer.
2: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
3: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs sirf $24.99.
2: Hamza samosas 3 for $10.
3: Top star fried onions only 99p.
2: Suhana masalas 2 for $1.50. Ramdev namkeen 2 for $1.49.
3: Hiya gram flour 179. Heinz ketchup 279.
2: Kesar mango pulp 149. Full makhana 245. Falcon cash and carry
3: 82 Assistant Street LE12JU ya Rolex Hill LE54UN.
2: While stocks last.
0: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
4: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
4: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 02085748410.
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
8: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
9: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
8: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
9: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
8: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
9: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
8: Book your tickets now at ZeppelinEntertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the SCMPRA.
12: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
13: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
12: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
13: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
14: इट्स अ डॉग वॉक, आई डू इट एवरी डे एट होम, आई डोंट नीड टू प्लान इट, चेक द टाइम, चेक माय फोन, व्हाई डोंट आई टेक माय
15: Hey boy!
16: Coast Guard, we're stuck.
17: Okay, help's on its way.
16: Hold on, mate.
18: Shoes tied. Phone.
19: Back before dark, love. Okay.
20: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
21: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
22: Hi, this is Saleem.
23: Hi, this is Saleem.
24: Hi, this is Suleiman.
25: Hi, this is Suleiman.
26: From Saleem Suleiman. Keep listening to
27: Leica Radio.
8: A Leica Radio classic plays now.

0: चले आए. वेल व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग तेरे दर पर सनम फ्रॉम द मूवी फिर तेरी कहानी याद आई इन द वोकल्स ऑफ कुमार सानू. वन मोर लवली ट्रैक दिस आवर बट यू स्टे ट्यून ऑन लाइक अ रेडियो बिकॉज़ आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
1: सलाम दे जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई

0: एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने अगेन है इस आवर. सो स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ रेडियो.
1: दिस इज द लाइक अ रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स. Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
6: 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
8: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
9: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
8: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
9: Or sales at leicamedia.co.uk.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
11: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
12: खुद से भी ज्यादा।
10: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
12: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
10: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394। ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
13: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
10: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
13: दिल तो टूट पे गया,
10: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
14: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
10: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
0: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at leicamedia.co.uk. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: Like a radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे
7: ब्लेसिंग यू थ्रू द नाइट विद द मिडलैंड्स बिगेस्ट एशियन हिट्स ऑन लाइका रेडियो।